ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ ਤੋਦ ਵੈਣ ਸਿਧੇ ਕਿਰੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਠਾ ਤਰਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਵਤੀ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਨਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਊ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਊ ਸਾਜ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈਗਾ ਚਲੀਏ ਦੋ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਇ ਰਹਾਓ ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਕੇ ਕੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੈਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਂਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੜੇ ਆਪ ਤੇਵੜ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਸ ਨਾਰਾ ਗੁਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੈ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਘਰੋਂ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਾਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਡਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਗੈ ਵਡਭਾਗ ਵਡੇਰੈ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਰ ਹਰ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਾਗਿਣ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧਨ ਧਨ ਸਾਸਨ ਜਿਤਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾਂ ਆਰ ਆਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾਰ ਕਾਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ ਤਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋ ਸੁਤ ਬੰਤਾ ਕੋਹੇ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਤਰਿਆ ਸੇ ਸੇ ਦਿਨ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਪਉ ਕਰਿਆ ਉੜੇ ਉੜਾ ਵਿਸੈ ਕੋਸਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜਗਾਵੈ ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਮਨ ਦਾਨ ਦਾ ਸਸਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰਜਣਾਰ ਪੁਨਰਣ ਗੰਮਾ ਗੰਮ ਪਾਰਾ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੋ ਜੀ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਣ ਹਾਰਾ ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਰ ਦਿਆ ਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੋ ਵਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਗੜਗੜੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰੇ ਕੋ ਪੁਰਸ਼ ਮਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹੋਂ ਤੁਧ ਬਿਨਵਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਪ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੋ ਜੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਰਬਾਣਾ ਹਰ ਤੇ ਆਵੇ ਤੋ ਜੀ ਸਿਜਨ ਜੁਮੇ ਸੋਵਾਸੀ ਸੇ ਮੂਹ ਸਹਿ ਮੂਤ ਪੈ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ
तें तोटे जम के फासी, जिन निर्भाव जिन हर निरभाव त्याया जी, तिन का पाओ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पड़ार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे पग सलाम तुझी अनक अनेक अनंता, तेरे अनक ते करे हर पूजा जी, तब तापे जवे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बहुत सिमर साह जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से पगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरु परंपर करता जी, तो जे वडावर ना कोई, तू जो जो एको सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुदे आपे से सब पाई जी, तुदे आपे से सब गोई, जन नान गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानू आसा मल्ला चौथा, तू करता सचार मैडा साई, जो तू पावे सोई थी सी, जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जेनू कृपा करे ते नाम रतन पाया, गुरमहला दा मन मोगवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मलाया, तू दरियाओ सब तुझी माए, तो बिन दूजा कोई नाए, जे जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जेहनो तू जाना है सोए जन जाने, हर गुण साधी आप खाने, जिना हर सेव्या तिन सो पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरम परटोया समला पहला, तित सरल बैले नु आसा पानी पाव तिने किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी गले, मन एक न चे समूढ़ मना, हर बिसर तेरे गुण घलिया रहाओ, ना हो जती सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुदा जन्म भया, प्राणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानु दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तिर किते ना काम, मिल सा संत पाए के वंदा, सरंजाम ला पाओ जल तरन गए, जन्म बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण पर की राखो शरमा, पातशाही दसवीं कब आवाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दू सवे तो गावो, आप दे मोहे बचावो, सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक से सब कर तारा, मोर अच्छा नहीं कर दे करिए, सब को आसंगरिया, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर पैन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो भर जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से का हमारे तारी है, जो जो सदर हमारे मारी है, आप आदे मुझे अभरी है, मरन काल का त्रास नुवरी है, वो जो सरा हमारे पच्छा, सिरिया तो जो करियो रचा, रा लियो मोरा खनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंधु के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता,
काल पाए ब्रह्म अवतरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए करमें बरगासा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्म ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताय हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन उपजायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को से गुण सो दियो, सतरन को पल मुंबद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानुत, पले बुरे की पीर पिछान, चीटी ते कुं चरे अस्तूला, सापर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर विशान है, काड़ काड़ के पढ़ पढ़ की जान है, जावुद कर करां कर तारा, पर जातर तब दे अपारा, जाबा कर कर तो हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन से सब तारे, आवे अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे तनरालम, जान बे पे दे रे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ, ताका मूढ़ चारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको गर्भान न मानत, महामूढ़ कह पे न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिन्ह न भेव, आवे अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, के वैसा प्रथम संसारा, एक रूबन सरूपा, रंग प्योरा कहीं पोपा, अंडर जेर से तजकीने, उतब खान बहोर राज दीने, कहूँ भूरा जाहूँ बैठा, कहूँ सिंह प्यो शंकर कैठा, सगरी से दिखाए चंबव, आदि घास रू से अंबव, आब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बारे सिख संगरो, दो जिते उठुत पाता, सगल मलेश करो रणगाता, जया तू सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दूत है मरे, पुरुष जवन पापरे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल नीट नहीं आए हैं, रचा होए ताए सब काला, तुष्ट हरी टरे तद काला, कृपा दृतान जाए नहर हो, ताके ताप तनक में हर हो, रेद सिद्ध कर्म सब होई, सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांते ताए उबारा, जिन नर नाम त्यार हो कहा, दार दोष दो तेरा, खड़ग के तमें शरण तिहारी, आबा दे लो अबारी, सर्व डोर मोह सहाई, दोष्ट दो ते लो बचाई सवैया, पाएंगे जब ते तुम रे, तब ते को आतरे नी आने ओ, राम रही पुराण कुरान, अनेक है मत एक न माने ओ, सिमरत शास्त्र बे सब है, बहु पेद गम एक न जाने ओ, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो ये बखाने ओ, दो हिरा सगल द्वार को शाड के, गयो त्वार हो द्वार, बह गए की लाज अस गोबिंदास तुहार, राम कली महला तीजा, आनंद क्या ओंकार, सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईया, शब्दो तंगा वो हरि केरा, मांजनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ये मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे, तू सब सारना, अंगीकारो करे तेरा, कार सब सवारना,
सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही करते रहे करदा तेरे सब किज है जे दे सो पावे सदा से सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या ना ही करते रहे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा साहब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा साहब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जे दियां वड्याइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पान शब्द कर सुबा गए कर सुबा गए शब्द वाजे कला जित कर तारिया पैंदो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तोर कर पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोर पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दूरो संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै सर से पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल वेतन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का भयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूछे तिसका हो उधारो ये वस्ता जी न जाई नेतन राकुर तारो तम संसार चरण लग तरिया सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाई मैनो जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पे होई तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन तीवे हरिया तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन तीवे हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

और संगत ते हैं मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी कबीर है गै बाहन सगन कान छत्रपति की नार

0: रोम हो गया शर्म शारदीय हो
1: मुख तो जदों दी सुनी बाणी सुनी बाणी सुनी बाणी तेरे मुख तो जदों दी सुनी बाणी रोम रोम हो गया शर्म शारदीय रोम रोम

जाको आए सोई बहा जो हर गुर ते मने निज कर मैल बोर न होए गो अंतर जामी सरदा मन की नानक दास मोकु कर संतन की

अंतरे हउमै ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए न पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावा चोटा खावा अंत गया पछताया। बिन नावा को बेली नाही पुत कुटुंब सुत पाई। नानक माया मोह पसारा आगै साथ न जाई। हौ पूछो अपना सतगुर दाता किन बिद दुत्तर तरिया राम। सतगुर पाए चलो जीवतिया इव मरिया राम। जीवतिया मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावा। पूरा पुरख पाया वड पागी साच नाम लिवलावा। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वड्याई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वड्याई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही संत महला चौथा कार तीजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद आवह संत जनो गुण गावह गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रहिया कर वाजह शब्द कनेरे राम। अंग 775 अते 76 ते सुशोभित। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाण विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साद लगे पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद पुख विस्माद पहु विस्माद सिफ विस्माद सलाह विस्माद उदड़ी विस्माद राह

जल थल जिया पुरिया लो माया कर आकार जिया के सोतो है जाने तिना पे तेरी सार। नानक भगता

मिट्टी मुसलमान की पेड़ पही कुमार, कड़ पांडे टांकिया जल्दी करे पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगियार।

नचे बजे बावे रूप करे सिंगा। ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का मूर्ख पंडित हिकमत हो संजय करे पिया। धर्मी धर्म करेगा बावे मंगे मोख द्वार जती सदावे जुगता जाने छड बाहे करबार। सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत प्रमाणा पिछे पाइए ताना।

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दों के शब्दों जे को जाने पे नानक ता का दास है, सोई निरंजन।

0: जोग जोग फेर वटाया ज्ञानी बुझैता सत जुगरा संतो का धर्म गिरथवा त्रेतै रथ जतै का जोर गै रथवा हो द्वापर रथ पैका सत गै रथवा कल युग रथगन का कूड़ गै रथवा हो महला पहला
1: श्याम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब।

जिया बा जना कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूत के क्यों करे रखी है सूत पवेर सोए नानक।

जिन पट इंद्र बार कुदरते पले संसार तन्ने हो लगा रब से ती देखने विचार।

सब मह रब रहया सो प्रभ अंतर जामी राम गुर शब्द रवै रब रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सहज समाईए तिस बिन अवर न कोई।

नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति जोत मिलाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागी हो सतगुरां दे पावन दर दीआं हाजरियां भरदिआं रब्बी बाणी के कीर्तन नाल आप संगत ने सांझ बनाई है, अरदास होई है, हुक्मनामा आप जी ने सरवण कीता है। तो कड़ा प्रसाद दीआं देगां दे वरतारे होणगे हुण, नाल ही अज दे इस पावन मुखवाक दी कथा विचार होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

0: दुश्मन डरे।
1: प्रभ सिमरत कछ भी न लागे, प्रभ के सिमरन आन दिन जागे।
0: प्रभ के सिमरन पौ न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे।
1: प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निदान नानक हर रंग।
0: प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध।
1: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा।
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दर के मानी।
1: प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल।

0: जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूरन आसा।
1: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माए समाए।
0: प्रभु जी वसे साद की रसना, नानक जन का दासन दसना।
1: प्रभु को सिमरे से तन बनते, प्रभु को सिमरे से पत बनते।
0: प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान।
1: प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे।
0: प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अवनासी।
1: सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला।
0: प्रभु को सिमरे से परि उपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी।

0: जय मात पिता सतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई।
1: जय महा प्यान दूर जंग करे, तै केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मुश्किल हो वे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी।
1: अनेक पुनः चरण करतने तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे।
1: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जप तो सुखिया।
0: लाख करोड़ी बंद ना परे, हर का नाम जपत निस्तर।
1: माया रंग देखना बजावे, हर का नाम जपते गावे।
0: जह मार्गे हो जात अकेला, ते हर नाम संग होत सुहेला।
1: ऐसा नाम मन का त्याइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए।
0: छूटत नहीं कोट लखवाही, नाम जपत तह पार पराही।
1: अनक बिगन जय आए सिंगारे, हर का नाम तत्काल उधारे।
0: अनक जोन जन में मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम।
1: मल कबू न तोवे, हर का नाम कोट पाप होवे।
0: ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध के संग। जय पेंडे महांत गुवारा, हर का नाम संग उजियारा।
1: हर का नाम ते नाल पछानो।
0: जय महा प्यान तब तो काम, तैयार के नाम की तुम ऊपर शाम। भक्त जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम।
1: हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट।
0: हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात।

0: नाम जानका रूप रंग हर नाम जप्त का परे न पंग
1: हर का नाम जन की बड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जप्त का

0: रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। बाहर व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पर जोबन भोजन सकसूद। यो नर गुण गुण कछु न बूझे, बस ले हो तो नानक सीजे। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पाप का मुल्ला।
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा।
0: दीने हाथ पाप करने तरसना, तिसे त्यागे अवर संग।

0: मानक राखन हार अपार जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पराने
1: छोड़ जाए तिसका शर्म करे संग साई तिस पर हरे
0: चंदन लेप तारे तोए गर्त प्रीत पसम संग होए करतूत पशु की मान सजात लोक पचारा करे दिन रात
1: बाहर अंदर मल माया कुछ करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहान
1: अंदर अगर गाल पाथर कैसे करे था
0: जाके अंतर बसे प्रावे आप नानक ते जन सहज समात
1: सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गले
0: कहा बुजारत बूझे डोरा निष्कही है तो समझे पोरा
1: कहा विष्णु पर गावे गोंग जतन करे तो ईश्वर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन
1: करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाई सो आवे न चीत जो बहराई ता सो प्रीत
1: गुरुआ के ग्रह पितर बसे अनंत के माया रंग रसे
0: दृढ़ कर मन है मने

0: जय प्रसाद अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे।
1: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे।
0: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर।
1: जय प्रसाद ग्रह संग सिमरो तिस रसना।
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कर धवर लुभावे।
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ता का जस गावी जय।
1: जय प्रसाद तुज सब कहू माने भोक्ता को जस रसन बखाने।
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: रब जी जब दरगह मार पावे नानक पासे ती कर जावे।
0: जय प्रसाद रोग कंचन देही लिवला भूत राम स्नेही।
1: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत।
0: जय प्रसाद तेरे

0: जय प्रसाद भाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे।
1: जय प्रसाद भूखन पैरी जय, मंत सिमरत न्यो आलस की जय।
0: जय प्रसाद अश्वास दसवारी, मंत प्राप को कमु ना बिसारी।
1: जय प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रोय प्रभ अपने मना।
0: जैन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठ सत से तिहाई।
1: इसे तिहाई जो एक अलक है, यहाँ नानक तेरी रखे।
0: जय प्रसाद करे पुन बो दान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को साथ साथ चितारी।
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रोए प्रभ अपनी मना।
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सोपरा सिमो सदा अनूप।
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह।
1: जय प्रसाद तेरी निकी जात, सोपरा सिमो सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह।
0: जय प्रसाद सुने करना आद, जय प्रसाद पेखे विस्माद।
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना, जय प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है, जय प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: जय प्रसाद परम गत पावे, जय प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: जय प्रसाद तू प्रकट संसार, को मूल न मनो विचार।
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप, हरे मन मूर्तु ताको जाप।
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे।
0: जय प्रसाद
1: तू पावे
0: साच, हरे मन मेरे तू ता स्यो राच।
1: जय प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपे जप सोए।
0: आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास।
2: प्रभु सुख प्रसन्न

0: अष्टपदी।
1: साध कै संग मुख जल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग बुझे प्रवनीरा, साध संग सबो तनवीरा।
0: साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक उपर जतन।
1: साध की महिमा भरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी।
0: साध कै संग गोचर मिले, साध कै संग सदा पर फुले।
1: साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस कुंचा।
0: साध संग सबकी रेन, साध कै संग मनोहर बैन।
1: साध कै संग ना कतहु तावे, साध संग स्थित मन पावे।
0: साध

0: सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
1: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु के करवान।
0: साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे।
1: साधु के संग सो तन पावे, स्थान ते सब को बरसावे।
0: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देवा।
1: साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन।
0: साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जनम।
1: साध के संग नहीं कछु काल, दर्शन पेट होत निहाल।
0: साध के संग कलुखत हरे।

0: जल में कमल लेप
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा ने दुख जैसे सर्व सर्व को सुख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक जो वसुंधरा को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ नानक जो पावक का सहज स्वभाव
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मत निर्मला जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारे ऊपर आकाश।

0: न जाए यथा कर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की मृत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप।

0: खणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार कई जगत के नो विस्तार
0: कई बार पसर पसार सदा सदा एक एक।

कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे कबू होए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे।

0: अभिमान सो नरक पाते हो स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवांत सो कृष्ण का जंत
0: आपस को कर्मंत कहावे जन्म मरे बोजन परमावे
1: तन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्ख ना ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आ गए सुख पावे
1: दरबारे समान का संग न जावे
0: बोल लश्कर मान को ऊपर करे आस।

0: आप पदेचे समझे आप आपे रचिया सबके साथ
1: आप गिनो अपन विस्तार सबका सुस्ता करने हार
0: उसते पिन को किछोए था।

0: जाए।
1: सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने बखियानी।
0: सच सच सच सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना।
1: भला भला भला तेरा रूप अति सुंदर अपार रूप।
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सर्वन बख।

0: संत के हते को रखे न कोई, संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपा कृपा संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पीतर।
0: संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जो लवे।
1: संतन के दुखन सर्व सुन जोन पाए, संत के दुखन त्रेग जुन कर माए।
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को चले।
1: संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच न चाए।
0: संत दुखी का थाओ को नाए, नानक संत पावे ताओ विगत पाए।
1: संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक निटिक न पाए।
0: संत का निंदक महा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक

0: को हर प्रम मंचति आवे, सो संत सहेला नहीं डलावे।
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे।
0: जैसा सत ऐसा दुष्टाया, अपने कार्य में आप समाया।
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद सब बुझिया।
0: जब देखू सब तब सब कुछ मूल, नानक सो सुख में सोई सतूल।
1: मैं किस जन्मे न किस मरे, आपन चलते आप ही करे।
0: आवन जाम दृष्ट

0: शब्द जप पै निहाल
1: उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे
0: नाम जपत पावे बसराम नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रगे रंग सदा सदा बसे हर संग
0: सहज स्वभाव होवे सो

0: राखै सद बलिहारे,
1: चरण साध के तोय तोय पियो, प्रसाद को अपना जियो,
0: साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा वट पागी पाइये, साध संगार कीर्तन गाइये,
0: एक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाये अमृत रस चाखे,
1: ओट गई संत दर आया, सर्व सुख नान तर पाया,
0: मित को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार,
1: सर्व दान जाकी दृष्टि माए, पूर्व लिखे का लेना पाए,
0: सब किछ तिसकाओ

0: गंभीर गहीर सुजाना।
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल भगत संत।
0: साध तेरे की चरनी पाओ नानक कै मने हो।

0: सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार,
1: दर्शन सत सत देखन हार, नाम सत सत ध्यावन हार,
0: आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी,
1: शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जस सुनता,
0: पूजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए,
1: सत स्वरूप दे जन मान्या, कर्ण करावन मूल पछान्या,
0: जाके हृदय विश्वास प्रवाया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया,
1: पैते निरपो होए बसाना, जिस ते उपजे तिस माहि समाना,
0: बस माहिले बस गड़ाई।

0: जान के सो सेवक सा सा समारे।
1: अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे।
0: अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई।
1: अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गतमित कोई न लखे।
0: प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दस प्रगटाया।
0: निक्की कीरी में गल रखे, पसम करे लश्कर कोट लखे।
1: जिसका शासन काट के आप, ताको रख दे कर हाथ।
0: मानस जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरथे जात।
1: मारे न रखे अवन कोई, सर्व जिया का रखा सोए।
0: काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बढ़ाणी।
1: बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मंत्र त्रपिए।
0: नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके शबर नाही दृष्ट।

0: अपने का हुक्म पसन्न।
1: इसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण के एक न जानो।
0: आठ पैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे।
1: मन मेरे तन की ओटले, मन तन अपना तन जन दे।
0: जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थो का दाता।
1: जिसकी सर्व सुख पावे, तिसके दस पाप मिटावे।
0: अबर स्यान

0: मन मन सो सेवक परमेश्वर की गत जान
1: सो सतगुरु जिस हृदय हरनाओ अनेक बार गुर को बल जाओ
0: सर्वने धान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म
0: सहस सियान पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए
1: सबल दर्शन पेक पनीत पार्षद चरण गत निर्मल
0: एठ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करना काने मन संतोष आत्म पत्याने
0: पूरा गुर अखियाओ जाका मंत्र अमृत दृष्टि पेखे होए संत
1: गुण व्यंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए
0: जीवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बवेक
1: गाउ बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभु निर्वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई
1: अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हृदय सिमरे
0: सद बलिहारी सत गुर अपने नानक जिस पर साध

0: सगल ब्याह मन ते खनसे
1: जिसका साथिन कृपा तारी साथ संग अपना मुरारी
0: सत पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस सरवन
1: निर्गुण आप सरगुण पी होई कला ताजन सगली मोरी
0: अपने चरित प्रभु आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोए
0: पोत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगा साध के संग।

0: सिमरत शास्त्र वेद बिचारे
1: हरकी पालत करो मालाए मन बाचत नानक फल पाए
0: संग न चालस तेरे तना तू क्याल पटावे मूर्ख मना
1: सोत मीत प्रेम भरवंता एंते कहो कवन सनाता
0: राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार
1: राज रंग माया विस्तार
0: आस आसी रथ सवारी
1: झूठा डंप झूठ पासारी
0: जिन दी तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक।

0: संत कहत रहत गत पावो
1: सार पूछत को नाओ सहस भाए नानक गुण गाओ
0: गुण गाओ तेरी उत्तर स्मैल बेंस जाए हाँ मैं बेक फैल
1: हो चिंत बसे सुख नाल सास ग्रासर नाम समाल
0: शाड से आन पसगली मना साथ संग पावे सच तना
1: हर पूंजी सच करो बिहार यहाँ सुख डर गए जयकार
0: सर्व निरंतर को देख कहो नानक जाके मस्तक लेख
1: एक जापे को चला है एक सिमर को मना है
0: एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत
1: एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण प्रव्याप
0: नानक विसार एक ते पे एक अराध परास्त गए
1: मन तन

0: सब बैर विरोध के संग कमात।
1: जब इसका वन चहना जापत तब हर कसु कहो किसे व्यापत।
0: जब अपने आप पर ब्रह्म तब वो कहा किस होवत परम।
1: अपने अकेला भरतीजा नान करने हार न दूजा।
0: जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किसको गनी।
1: जब एक हर अगम पार तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार।
0: जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब से सख्त को कित ठाए।
1: जब आपे आप अपनी जोत रहे तब कवन निडर काम कत डरे।
0: अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगमा पार।
1: अविनाशी सुख अपने आसन ते जन्म मन को कहा विनाशन।
0: जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास को किस होए।
1: अवगत गोचर प्रवीक तब चित्र गुप्त किस पूछत लिखा।
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे।
1: अपने आप आप ही अर्ज जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा।
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता ते बिन मैल को क्या तोता।
1: जय निरंजन रंग का निर्वाण ते कौन को मान को अवमान।
0: जय स्वरूप के जगदीश ते चल सिद्धर लगत को कीश।
1: जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे ते किसे भूख कवंत बतावे।
0: कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाई सुमार।
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई।
0: जय सर्व कलाया पे परवीन ते वेद कतेव का को चीन।
1: जब अपने आप

0: आप तुम्हारा।
1: आप सुको आप अंदेश, तै गुण का नहीं परवेस।
0: जय एक एक एक भगवंता, तै कौन चित किस लागे चिंता।
1: जय अपने आप आपे पति हारा, तै कौन कथे को सुनने हारा।
0: वो बेअंत उचते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा।
1: आप रचियो जय आप रचियो परपंच कार, तै गुण मैं किनो विस्तार।
0: पाप तै पई कहावत, कौ नर को स्वर्ग बिछावत।
1: काल जाल माया जंजाल, हमे मो परम पे पार।
0: दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार की ओब ख्यान।
1: अपन की लब कर देखा, खेर संकोच तो नानक की।
0: जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पसार संत प्रताप।
1: दो भाग आप तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी।
0: आपे कौतक करे नंद चोज, आपे रस भोग निर्जोग।
1: जिस भावे तिस अपन नाई लावे, जिस भावे तिस

0: कारज पूरा।
1: मत पूरी अमर जाकी देष्ट, दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ।
0: चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।
1: तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पर प्रदान।
0: मन बसे सो

0: देही मैं इसका विश्राम।
1: सुन समाधान कह नाद, कह न जाय चरम समाद।
0: जन देख्या जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए।
1: सो अंतर सो बार अनंत, कट कट व्याप्या भगवंत।
0: अन्न माहे आकाश प्याल, सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल।
1: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
0: कौन पानी बे संतर माहे, चार कुंट दह दिशे समाहे।
1: तिस दे बिन नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानु सुख पाओ।
0: वेद प्राण सिमरत मैं देख, ससियर सूर नखत्र मैं एक।
1: वाणी प्रभु की सबको बोले, आपन डोल न कबू डोले।
0: सर्व कला

0: सुने सब बचन सर्व व्यापी राम संग्रचन
1: साधु सब कहत
0: जो जो हो सोई सुख मान कर्ण करावन हार प्रवजन
1: अंतर बसे बार पी होई नानक दर्शन देख सब होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत
1: तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार
0: अनक कला लखी न जाए जिस पावे तिसले मिलाए
1: कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जाने आप बुझाए
1: सर पूत अवतारा सर्व नैना पे खनहारा
0: सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना
1: आवन जाने के खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया
0: सबके मद अलिप्तो रहे जो किस कहना सुआपे कहे
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे तले समाए
0: इस्ते होए सुना ही बुरा उरे कहो किने कश कर
1: आप बुलाकर तू तकनी की आपे जाने अपने जी की
0: आप साच धारी सब साच ओत पोत अपन संगराच
1: ताकी गत मित कही न जाए दूसर होए तसो जी पाए
0: इसका किया सा परवान गुर प्रसाद नानक के

0: सबके अस्तत करो संत मीत सावधान घागर चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जस मन बसे सो तन
0: सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख पर।

पास जियो। अंबर कुंजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, साथ में चले साहू रह क्या मोदेसी अगे जाए जियो।

जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबूत गवाई जियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कै सुकार कमाई जियो। त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो। यों पावे हर दर सावड़ा न लगे तती बाओ जियो। आपो बोलना जानदा मैं के सब हुकमाओ जियो।

तिरपणकांत वैसु आगण अवगणवंती दूरे जेसी आसा देसी मनसा पूरया पर पूरी।

प्रभ जैसे अविनाशी कुंकार सतगुर प्रसाद राग सुई शांत महला पहला घर चौथा जिनकी याद न देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे कट जानना धन चंद दी पाया।

दुई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहेब सो सहलाइए जिन कारण किया।

आप नुड़ा प्रभु सहज प्रजाता जा मन साची लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहेब सो सहलाइया जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यो मन मानया हर सिती राता।

सेवक सेवा ता कर सशद पतीना शब्द पति जय अंक पीजै सुमहर महलांत रहे आप करता करे सुई प्रभु आप अंत निरंतर है गुरु शब्द मेला ता सुहिला बाजत शब्द बाजत अनहद बीणा।

प्रीतम मोहि लाया मन मेरा, पाया कर्म भेद दाता, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, हर वसिया मन मोरारी। नानक मेले गुरे अपने, गुर के शुद्ध सवारी, सुई महला तीजा।

राम नाम प्यारे सकल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवण जा रह सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी।

मेरो शोध सुभाई आपको भाई रंग सुरलिया माने शेष गारी जा प्रभाया हर हर नाम समाणी।

संत जना मंगल गाए हर जी आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिलया अपूर्व जन बनाई नानक प्रभ पाया मैं साचा ना कदम रे न जाई राग सुए जंत महला चौथा कर दीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, साल दस भेटिया गुरपुरा, नानक सच बिड़ियारी। संभलिया सैतान मान मित सच पाया बलराम जीओ, सतगुरु मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जीओ। गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया, स्वर्ग से आई गय कंठ हिलाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे बाजे, अनहदा छुणकारी, सुन पे विनाशे सगल नानक, प्रभुरख करणे हारे। उपजिया तद ज्ञान सौरे पइए, उपजिया तद ज्ञान सौरे पइए, एक हर बलराम जियो, परमे परम बेले मिलिया कोई न साखे, पैन कर बलराम जियो। विषम वेखै विषम सुनिया, समान नजरी आया, जल तन मील पूर्ण, स्वामी घटकर आसमाया।

राम जियो बिन साधु का दिया सर्वगुणा पर पूरे अंतर जामी सब प्रभु मेरा सर्व रया पर पूरे।

अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार भया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख अविनाशी जस वेद प्राणी गाया अपना बिरद रखिया परमेसर नानक नाम त्याया नाव निद सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खातु खर्चित बिलिषित सुख पाया।

प्रवे अवनहसी हो तिस की दासी मरे न आवे जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी यश भुजाए सूर सुरत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी बड़ भागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा सूहे विच दुहागनी पर पिर रावण जाए पिर छोड़िया कर अपने मोहे दूजे पाए मिठा करके खाया बोसा दो वध्या रोग सुध बतार छोड़िया फिर लगा जाए बजोग गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिगार सहज सच पिर राव्या हर नामा और धार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार।

कर भय पाए सगार बिनाए, नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए, पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाए, तिस दा अंत न जापे गुर शब्द बुझाए, माया मोह गवार है दूजे परमाए, मन मुख ठौर न पाए नी फिर आवे जाए, जो तुस पावे सो

उस सील न संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्म खवार जिस पूर्व हुए लिखिया ते सतगुर मिले पतार सुहावे सब उतार धरे गल पैरे खमा सिगार पेये सौरे बसूबा पाए जिस पूज करे सब संसार उर लाई किसे दीना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिसे अवनासी पुरख पर तारू महला पहला सुह

तुम भूल रस पूजन पाहु करे, तन मन सौपे कंत को तो नानक भोग करे। महला तीजा काजल फूल तुम भूल रस।

सूरन जापे चंद जहे ज्ञान प्रकाश ज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे विचार बिन बूझे सब होए खुवार नानक गुरमुख उतरस पार महला पहला सबदे

सुमानु आज श्रायन गुजारो साथ संग जाओ को हर रंग लागा धन धन सो जन पुरख सुभागा एत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीते अमूले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया प्या पराया कहो कबीरे ते नर भूले खसम बिसार माटी संग रूले।

करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम की हम भी चलना, दूर गौन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग आना, तय जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जिया जिन जियो दिया सो रिजक अमरावे, सब कट पीतर हाट चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हिरदे नाम सुमार सवेरा, जन्म सरानो पंथ ना सवारा, सांझ बरे दिसे अंधारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेत सनाई दुनिया फन खाने, सूही उच्चे मंदर साल रसोई, एक करे फुन रह न होई, एह तन ऐसे जैसे कास की टाटी, जाल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटुंब सहेरा, ओ भी लागे कार सवेरा, कर की नार उरह तन लागी, ओह तो पूत पूत कर पागी, कह रवदार सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, एक ओंकार सरगुर प्रसाद राग, सूही बाणी शेख फरीद जी की, तप तप लोहले हाथ मरोरो, बावल हुई सो सौ लोरो, तैसे मन की आरोस, मुझ अवगुन सह नाही दोष, तै साहब की मैं सार न जानी, जो बुन खाए खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोल तू कित गुन काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाले, प्रेह बून कत है सुख पाए, जा होए कृपालता प्रभु मिलाए, विंदन खूही मुंद अकेले, ना को साथी ना

ललत बेड़ा बंध न सकयो बंधन की वेला पर सरवर जाग्यो जब उछले तब तरण देहला हाथ न लाए कुसंबड़े जल जासी टोला रहाओ एका पीने पतली सा केरे बोला दुद्धा थनी न आवे फिर हुए न मेला कहे सर फिरीद सहेलियो सौ अलैसी हंस चलसी डूमना एहतन टेरी थीसी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी स भंग गुर प्रसाद राग बिलावल महला पहला चौपदे कर पहला तू सुल्तान हो कहा मियाँ तेरी कबन बढ़ाई जो तू देसो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जे कुछ होया सब कुछ तुझते तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाने मेरे सह मैं अंदले क्या चितराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ न कथ न जाई जो तुद पावे सोई अखातिल तेरी वड्याई एते कुकर हो बगाना भौका स्तन ताई भगत नानक जे होएगा त खसमे नाव न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेश कलंदर कट ही तीर्थ नावा एक सौद मेरे प्राण बहता है बहुर जन्म न आवा मन बेद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पर आई हमने चिंत पर आई रहाओ अगम अगोचर अलखे पारा चिंता करो हमारी जल थल मयल भरपुर लीना कड़कड़ जो तुम्हारे सिख मत साबो तुम्हारी मंदिर छावां तेरे तुझ बिने वर न जाना मेरे सब गुण गावा नित तेरे जी जन सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत दुआ पासे जो तुद पावै साई सोई चंगा एक नानक की अरदासे बिलावलू महला पहला आपे सौद आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे काकर वेखे तान तू दाता नाम प्रवान ऐसा नाम निरंजन देओ हो जाचक तू अलख पेओ रहाओ माया मोह तरकटी नार पूंडे कामन कामन हार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधार चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसे विजात न होए एको को ना ही पौ कोए करता करे करावै सोए शब्द मुए मन मन मन ते मारिया ठाकर है मन साचे तारिया अवर न सूजे गुर को आरिया नानक नाम रते निस्तारिया बलावल महला पहला गुर बचनी मन सहज ध्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख परम भूले बौराने हर बिन क्यों रहिए गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीव हो मेरी माई हर बिन जियरा रह न सके खिन सदगुर बूझ बिझाई रहाओ मेरा ब्रह्म बिसरे हो मरो दुखाले सास ग्रास जपो अपने हर पाले सतबरागन हर नाम निहाले अब जाने गुरमुख हर नाले अकत कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम गोचर दे दिखाए बिन गुर चरण करणी क्या कार कमाए होमे मेट चले गुर शब्द सुमाए मनमुख

सुख पाए हर गुण गावे सज सुभाए रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जीव आपसे मने आए आपे शोभा सद ही पाए गुरु के मेले मेल मिलाए गुरमुख राते शब्द रंगाए निजगर वासा हर गुण गाए रंग चलूले हर रस पाए यो रंग कदे न उतरे साज समाए अंतर सद मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुर न फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा बिलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अंचिंत नाम बस्या मन आई होमे माया शब्द जलाई दर साचे गुर ते शोभा पाई जगदीश सेउ मैं अवर न काजा आंदिन आनंदो होवे मनो मो मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाज नाम निवाजा रहाओ मन की प्रतीत मन ते पाए पूरे गुर ते शब्द बुझाए जीवन मरण को संसर वेखे बहुर न मरे न जम पेखे कर ही मैं सब कोट निधान सतगुरु दुखाए गया अभिमान सद ही लागा सहज ध्यान अनदिन गावे एको नाम इस जग में वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तै रहा सुमाई सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द मीठा लाया नानक दसन बूझी मन तन सुख पाया राग बिलावल महला चौथा घर तीजा एक अहंकार सर गुर प्रसाद उदो मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना जे नटुए तंत बजावे तंती त्यो वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ माया गिर सत भरमत है प्राणी रख ले वो जने अपना ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गतमित कहिए हर किए पतत पवना ओ ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उधर हो परे हो सरना प्रभ दीन दयाल भक्त पव तारना हम पापी राख पपना हर दासन दास हम कर योजन नानक दास सन्ना बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख ले बहु मेरे ठाकर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन भज राम नाम मे रामा गुरमत रस पाइये होर त्यागो ने फुल कामा रहाओ हर जन सेवक जो हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर न कोई मेरे ठाकर हर जप गे वड्डे कर्मा नाम हीन त्रिक जीव ते तिन वड दुख सहमा ओ फिर जो न पवाई है मंद भागी मूड़िया कर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा सवल बिलावलु महला चौथा हमरा जित लुप्त मोह बिख्या बहु दुर्मुत मैल भरा तुमरी सेवा कर न सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जप नर हर नाम नर हरा जन उपर कृपा भवतारी मिल सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर ब्रह्म स्वामी हर देहो मत्ती जस करा तुमरे संग लगे से उबरे जो संग काष्ट लोहो तरा साकत नर होशी मत मध्यम जन हर हर सेव न करा ते नर भागिन दोहरा दोहचारी वे जन्म मुए फिर मरा जिनको तुम हर मिलो स्वामी ते नाहे संतोख गुरसरा दुर्मत मैलगी हर पजया जन नानक पार परा बिलावल महला चौथा आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करहु हर हर नाम बोहित है कल युग गुर खेवट गुर शब्द तरहु मेरे मन हर गुण हर उचरहु मस्तक लिखत लिखे गुण गाए मिल संगत पार परहु रहाओ काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाई उपदेश जन कतहु ना कतहु उपदेश जन करहु सतगुर सेव सबल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत रस मीठा लागा दिन बिसरे सब बिख रस हो राम नाम रस राम रसायण हर सेवो संजन हो
चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो बिलावल महला चौथा। खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापे हर मंत जपानी जो पैनी गुर सतगुर पर ब्रह्म कर पूजो नित से वो दिन सब रहनी। हर जन देखो सतगुरु नैनी जो ऐश सोई फल पाओ हर बोलो गुरमत बैनी। रहाओ अनक पा चित भी है बहु तेरे सो सा हो वे से बात हो बैनी। अपना भला सब कोई बादशाह है सो कर जे मेरे जो करे सो करे जो मेरे चित ना चितैनी। मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी। अनदिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंतु पुरख जंतैनी। जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे तिवे बुलैनी। बिलावल महला चौथा। आनंद मूल त्यायो पुरखो तुम अनदिन आनंद आनंदे। धर्म राय के कान जुकाय सब चूके जम के छंदे। जब मन हर हर नाम गोविंदे उठ भागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे। रहाओ साकद मूड माया के बद के बिच माया फिरे फिरंदे। तिसना जलद किरद के बादे जो तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे सो उदरे बड़ भागी सेव करंदे। जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे। आपे ठाकर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे। जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। एक अहंकार सरगुर प्रसाद राग बिलावल महला पंजवा पड़ताल कर तेरवा। बोलो भैया राम नाम पत पावन पत पावनो। हर संत भक्त तारनो हर पर पुरे रिहा जल थले राम नाम नित गाई हर दुख विसारनो। रहाओ हर किया है सगल जन्म हमारा हर जप्या हर दुख विसारन हारा। गुर पेटिया मुक्त दाता हर कोई मारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा। पाओ दूजा बिनस बनासा विच आसा होए निरासी। सोजन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो। जन नानक तिस पग लावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौपदी कर पहला एक अहंकार सर गुर प्रसाद। नदरी आवे तिस मोह क्यों मिलिए प्रभु बनासी तोहे। कर कृपा मोहे मार्ग पावहु साध संग अंचल लावो। क्यों तरिए बिख्या संसार सतगुर बोहित पावे पार। रहाओ पवन चलारे माया दे हर के पक्ष सदा थिर से।

अनाथ तुमरी शरण आई, कर कृपा हर चरण तिहाई, दया करहु बसहु मन आए, मोह निर्गुण लीजे लड़लाए, रहाओ प्रभु चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़, सर्ब दुख हर सिमरत नसै, जाके संग सदा प्रभु बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार, बिसरत नाम हो तनसार, प्रभु चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसर सब का मोहताज, चरण कमल समलागी प्रीत, बिसर गए सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भक्तन के कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा जानली एक कर गावना, एक ओंकार सरगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक बेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियाण पा बिरथिये प्यारे, राखन को तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सोजन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो हुए दयाला, सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तना की, जिने अपना प्रभ जा